0: पाए। वन जंगल ओसो छामी दैके बारी को चुरोट विधि ओरे बने कुबार दिनके नाचे
1: लांखार नाम ल लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने होने हालले च अनुगमन दिने व्यवस्था चाउसो दिदिए
0: गेछो छामेला खोरे ल चाउसी खोरिए होगिदे तरिम गाइ गेजो नेके लाइजु अब नजिले बने गेंग ल गेजो नेके नालाए औलिन नायो के नाइगे
1: वन जंगल स जुडिसियो गेंग बारी ल बालिनाली कुचुला चुली यात्रा र सकाउसु छिनि ने चाउसो सैदेके खेले हे
0: वन जंगल नेला कि गेमाइए ने ओला कि नि पार जना खरना नार मिलि देखो नै सानो जने के सये
1: बट्टा सुचुली जु बेला को हिजिम के कोटल ने के सताकी ने हे नछु म छिनि ने चाउसो के सये
0: ने लागि ने नि दाई के मने के पछि सोनो अरुले मने के पछि या
1: के छ थामला पोयाल ने लागि के सन्ति नि के छ का ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका भूमि कार्यालय खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।

0: मेलायु मायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योनी मस्तक जरुरी सूचना जुमु पेला खिमरिदी गरम ओबरी जेउ पेला सुनो थोरी कता ओचुरी जेउ आउ पेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्त ज संभावना चाहिए आउ ये जिमी प्राकृतिक सम्पदा र तक्षेत्र ज सक्षम नारी वातावरण मिले ने लख्याका असर केने रि मूल र थंगने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज ताना दे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो नाखार नामे ल मे लागिने सज जिमी किमी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिंगे को ठेल मेला की नाटी जन धनी में खेपा छिपी ताऊ फोकाई वन जंगल सर मेरा आरिन्दी बानी एमएल एमएओ सचा मेला लिउसोतर पोतरवाले पारदगेल हटे
1: सलाई लाइटर स्याउला मे सचाउने चिज राले जबाङजा र यामादेने पोल गेने या इतो चिज र रैदे वन जंगल याले गेमा बाया
0: पिकनिक वन भोज बाको मे सचाउसु छिन्नी मेले चाउसु सैदे कि खनाले वन जंगल ओसो छामि दैके बारीको चुरोट विधि ओरे बनै कोबा
1: नान्थाङ नाम्लो लिज्यौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बनी हुने ढाल्लै छ अनुगमन दिने व्यवस्था चाउसो गिरिए
0: गेछो छामेला खोरेल चाउसी कोरिए हरिदे तरिन गाई गेजो मेके लाइजु अब नैजिरे बनाए गेन एल गेजो मेके मालाए औलेम लायो के माइजे
1: वन जंगल छ जुडिसी हो घेङबारी ल बाली नाली चिउला चिउली यात्रा रस चाउसो छिनी ने चाउसो सैदे के खेले
0: वन जंगल मेला के माइजे
1: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सर्ज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय ल खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा